जिन राम कहे कोई अल्लाह आख लगे कोई वाहे गुरु आख लगे कोई राम राम आखी जावे सब उस प्रभु दे नाम ने सतगुरां ने बाणी विच उस प्रभु नु किन्ने नामा नाल पकारिया है रब एक है प्रभु परमात्मा एक है ते ए दुनिया बखरे बखरे नामा नाल पकार दी है भी किस भी नाम नाल पकार लवो बस जेड़ा भी उसका नाम लवेगा उतर जाएगा।

कोई हो जाए नहीं। जिन्हें प्रभु दा नाम लिया होवे तिना तरिया होवे। जापहीन तपहीन कुलहीन कर्महीन सतगुरु किड़ियां बख्शां कर रहे हैं, नाम दी वड्याई कर रहे हैं।

बीतया, रात बीती, फिर दिन आया। उस मालक दी बख्शिश होई, आज इस जंगल दे विचों ब्रह्मा दे पुत्र श्री नारद जी लंघ रहे ने। अचानक बच्चे वल निगाह पई, आखण लगे, ओए बच्चिया, इना उदास ते नाराज क्यों बैठा? प्रभु दा नाम जपया कर, प्रभु दा नाम जपण दे नाल सारे दुख ते भुखां दूर हो जांदे ने। राम राम जपया कर, राम नाम जपण दे नाल संसारी दुख ते भुखां सारियां ही मुक जांदियां ने। अनारद जी इनी गल करके तुर गए ने। बच्चे ने कन्ना नाल सुनिया ते हिरदे विच बसा लिया, सिमरन विच जुड़ गया ते की सोजी मिलती है? किन्ने ही महीने उस प्रभु दे सिमरन विच बैठा रहा। राम राम दी जाग सवासा नाल जुड़ गई, किन्ने महीने बैठा रहा। अज किन्ने महीनिया बाद इस दियां अखां खुलियां ते देखो नाम दियां बरकतां की तक रहा है। इस दे हाथ ते पैर ठीक हो गए, हुण ते पिंगला नहीं दे रहा। अज जदों इसने कुछ तकिया ना, ऐ प्रभु तू किड्डा दयालु है, तू किड्डा कृपालु है। सुनिया सी तू रहमतां दा मुजस्मा है, अज ते तेरियां बख्शां, अज ते तेरे

एक महापुरुष इस बरसात विच तुरे जा रहे ने ते की देख रहे ने और सामने एक घर दिस रहा है। बरसात तो बचने लई इस दरवाजे दे कोल जाके खलोते ने भी घर किसदा है बेसवादा है। महापुरुष बाहर खलोते बरसात हो रही है सर्दी दी रुत है कंब रहे नी ते गनका ने दरवाजा खोलिया बाबा जी अंदर लंघ आओ अंदर लंघ आओ। महापुरुष दरवाजे विच खलोते नस के अंदर गए सतपुरख आए ने सेवा कर लवा नस के गई ते दूध का गिलास लेके आई बाबा जी शक लगो। महापुरुष आखन लगे बची तेरा काम की है की किरत कर दी है। बाबा जी मेरा धंधा बहुत माड़ा है मैं कर्मा दी मारी बेसवा। आखन लगे बच्ची आ तेरे हथां दा दुध असां ने नहीं पीना इन्नी गलाखी ते गनका दे अखां विचों हंजू आए क्यों नहीं पीना तेरा कर्म माड़ा है जे साड़ी एक गल मनेगी तां ये दुध का गिलास मैं पीवांगा। महापुरुष दुनिया नू तारन वास्ते आंदे ने बाबा जी तुहाडी हर एक गल मन्नांगे। महापुरशां दे कोल एक पिंजरे दे विच तोता

तू राम बोलेगी इवी बोलेगा, इनू राम राम सुखाया कर, गल मनेगी। हाथ जोड़ के आखन लगी, बाबा जी इस तोते नू मैं राम राम सिखावां। महापुरशां ने दुध सकिया। हुण महापुरशां दे बचन तोते नू हर रोज राम राम सिखाउंदी है, हर रोज किन्ना चिर राम राम करदी है। ते एक दिन इहो जिहां बख्शां होईआं, राम नाम इहो जिहा इहदे सवासां नाल जुड़िया, तोते दा उधार ते होना ही सी, इहदी रसना ते राम सदा वास्ते वस गया। हर वेले राम राम राम ते इतिहास विचों सोझी मिलदी है, एडी वड्डी पापण ते राम नाम दियां बख्शां गई स्वर्गां। राम नाम ने तार दिता, लोक परलोक सवार दिते, स्वर्गां दे दरवाजे इसलिए सदा वास्ते खुल गए। ते ए है प्रभु दे नाम दी महिमा। सतगुरु बाणी विच सोझी दे रहे ने, जप हीन तप हीन कुल हीन कर्म हीन नामे के स्वामी ते उतरे। किड्डा भी गुनाहगार है तू, किड्डा भी पापी है, किड्डा भी कर्महीन है, प्रभु दा नाम जपेगा, राम नाम जपेगा, वाहेगुरु अल्लाह।

अनंत सागर पार करके कीर्तन की समाप्ति अरदास होगी हुक्मनामा कड़ा प्रसाद की देख बच्चियां वालों गुरमुख परिवार वालों जो सेवा है वो भी प्रवान करनी तो आओ हम अनंत सागर पार सारे मिलके करिए गुरु नानक पातशाह मेहरबान सतगुरु आप जी दे प्यार वाले गुरसिख माई भाई साहब जी जिन्हां नूं आप जी ने बख्शिश करके ए दात बख्शी तो आप जी दे दरबार ही जुड़ के आप जी दे बख्शिया खजाने सतगुरु आप जी दे पवित्र पावन शब्द का आदर करते हैं कीर्तन भेट गाउण अरदास कराउंदे हैं अंतरगामी गुरु जी आप अपने गुरसिखां नूं बच्चे बच्चिया नामदान बख्शो कारोबार च वादे बख्शो सिखी जीवन सत्संग दी दात

और महाराज की कृपा जिन्ना उत्ते नोबडी इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड वी हैव हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ फॉल्ट्स एंड आई थिंक आई एम द ग्रेटेस्ट सिनर इन दिस वर्ल्ड येट आई हैव होप मैनु आस है कि सदगुरु किसी दिन कृपा करेंगे मनु पापी नु तार लेने महाराज शब्द पढ़िया है हे ठाकुर ओ माय मालिक बड़ा कमाल का शब्द है नो टाइम एक्सपेंस हे ठाकुर हां दासो आई एम हम्बल सर्वन मैं निर्गुण गुण रिक्वायर नो क्वालिटीज फुल ऑफ फॉल्ट नान दीजिए नामदान ओ माय लॉर्ड गुरु नानक साहब महाराज से गिव मी द गिफ्ट ऑफ योर नेम राखो ही ए प्रोय मे आई लव यू विथ रिमेंबरिंग योर नेम एंड मे डिवेल्प इन माई हार्ट मे यू डिवेल्प इन माई हार्ट ऑफ

जब लोनी भाग मिलार उठे तब लो पढ़ते फिरते बहुत आयो कल खोर समुद्र में मूड उठे कब हूं मिट है नीरे पछतायो सत विचार यह मथुरा जगतार्न को अवतार बनायो जप्यो जिन अर्जुन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भ अनुगुरु नानक पातशाह अनुगुरु अर्जुन देव पातशाह जी का पवित्र पावन नाम रसना से लिया है और कोई संकट भी आएगा तो 84 लख जूर तू बच जाएगा तो प्यार न सारे आखो अनुगुरु अर्जुन देव गंगा जी असी गुरु की संगतों के सेवादार पातशाह हुक्म करो हलम कह लगे गंगा जी फिर कड़ा प्रसाद ही देख पिया पर कड़ा प्रसाद ही देख उस आटे भी नहीं बनाए अज गुरु की संगता की सेवा करनी है अपने हथी पहला चक्की पी दैवी गुणा वाली मां जगत माता माता गंगा जी अज गुरु की संतान वास्ते आप चक्की आटा तैयार किया फिर साहबा ने अपने हथी कड़ा प्रसाद की अमृत देख तैयार सोने थाल विच पाई उत्ते चिट्टा रुमाल पाया माता गंगा जी कह लगे पातशाह किसे सिख नू बुलाइए हजूर कह लगे नी गंगा जी असि आप ही अपने सिर पे संजय पातशाह जी कड़ा प्रसाद जी दे अपने पवित्र पावन शीश से रख चादर भी हुकम मारी तुरन लगे माता गंगा जी कह लगे पातशाह मैनू की हुक्म है हजूर कह लगे गंगा जी जे संतां की सेवा करनी तो तुसी भी ठंडे जल की गागर कर जिथे संगत को भुख लगी उसे प्यास तो मात गंगा जी ने सिर भी उसे गागर जल की रख ली हजूर तुरन लगे कह लगे गंगा जी पखा भी ना लै लो गर्मी बड़ी तुरै जाते अज पंजवां गुरु नानक सुरती नाम सारे करो दर्शन से प्यार नाल की रखो तन गुरु रात दस गुरु तुरै जाता है सिखा ने दर्शन करो नदी तो रोज तुरती है समुद्र को मिलने वास्ते पर समुद्र कदे नहीं मिलता समुद्र कदे नहीं आता तक लो प्यारी सात सिंह नदी रूप सिखी जे गुरु के दर्शनों तुर पैंदी है जे कोई रुकावट पै जाती है तो गुरु आप ना उतरते अद्धी रात दस गंगा जी सुनो ना मेरी सिखा के प्यार वाली आवाज भावे उन्होंने प्रशादा नहीं दे ठंडा जल किसी ने नहीं पिलाया पर फिर भी गुरु की संगत प्यार भी किस तरह अरदास कर गंगा जी सुनो साहबा ने बख्शिश की थी माता गंगा जी कन्ना में प्यार की आवाज आ रही है केड़ी सारी संगत रात का समय प्यार इजरी है ते अरदास कर रही है मेरा

पखा फेरी पानी तो हुआ जो दे में सोखाई और आप गुरु की असंता में पखा बाबा जी बाबा जी सिंह जी महाराज पूर्ण महापुरुष है जिन्हें साहब श्री कुल साधु साक्षात गुण हर जाए। बाबा जी वचन करते सन मैं जी गुरु को साक्षात समझोगे तो साक्षात जे नहीं समझोगे तो फिर कौन रब इच्छा हो सी कुफरी का जिक्र है शिमले तो उपर है कुफरी पार्टीशन तो पहले दिया गल बाबा जी कुफरी महाराजा पटियाले का उस वे राय महाराजा यादविंदर सिंह जी थोड़ा ही समा आया चढ़ाई कर गया सिकम दे बड़ी महान अस्थि सन उन्होंने माता जी राज माता उन्होंने बेनती की बाबा जी गर्मी है पंजाब दे आप उसे बख्शिश करो बेनती प्रवान हो गई। पहला तो बाबा जी कह लगे सानू लोहड़ी नहीं जिते गुरु असी राजे महाराजिया को जा करना है तो राज माता ने गर्म पला पा के अरदास की बाबा जी सन गुरु नानक पातशाह भी तो राजे शिवनाथ के घर गए सन आप तो कुफरी बाबा जी पहुंचे पूर्णवासी का समागम सत्संग रोज का प्रवाह चलता है नंद सर पर पूर्णवासी का खास मन उस वे सेव लैलपुर रेंगे सन संत महाराज सन सुजान सिंह जी सारा जत्था कट्ठा तो ख्याल आया चलो मना चल के बाबिया के दर से हाजिर पाइए पूर्णवासी के समागम लैलपुर तो संतान लाहौर जलंधर लुधियाना दिल्ली देहरादून प्यार वाले संगी बाबा जी की संगत करने वाले पहुंच रात का विमान सजे शिमले तो तकरीबन काफी 8-9 मील है शिमले बड़ा भारी दीवान सजिया रात अमृत कीर्तन है अमृत वेले फिर की तो यह शब्द क्योंकि पूर्णमासी तो दूसरे दिन यह जरा शब्द है गुरमत हृदय गरीबी आवे हाउ किस कोल हुकुम आया गुरमत हृदय गरीबी आवे हूं भी पढ़िया तो भाई साहब भाई संता सिंह जी रागी इतने होंगे सन बाबिया ने तेलू जिस तरह अजकल भाई साहब भाई केर सिंह जी जिन्होंने सारी अज भी गुरु बाहर नहीं जाते क्योंकि जिन्होंने मालिक के दर से ड्यूटी उन्होंने बाहर जाता चाहे भी नहीं है तो हाजर नाजर गुरु नानक जान के श्री गुरु ग्रंथ साहब जी हो प्यारी शासन एक मिनट नहीं पछ एक मिनट एक इसका जिक्र है सर्दी बड़ी सी एक रागी पछड़ गया दो तीन मिन बाबा जी ने अमृत वेले तारना की थी कि आओ प्यारे यार गुरु नानक ने तेरी उम्मीद करनी है कि सिख ने गुरु नानक की उम्मीद एक न भर गया गुर कर धोवा सौ जागे हो निष्पर्श होवा यो क्यों कंत प्यारी होवा सौ जागे हो निष्पर्श गुरु नानक जागता पे है गुरु नानक उमीकता पे है टाइम नाल पहुंचे गुरु ने दर से हाजिर लग जाए गुरु की बख्शिश मिल जाए तीन मिनट कोई थोड़े होते तिना मिनटों में पता नहीं कितना पाड़ा पै जाता है पढ़ना तो भाई संता सिंह ने शौक पढ़िया गुरुवत हृदय गरीबी आ बड़ा हसया संगत ने चौंक के पढ़िया इतना असर होया राज माता जी ने मन से कि संगत भी चोट के ते बाहर सार संगत दे अपने दुपट्टे नाल जोड़े चढ़ गए गुरुवत हृदय गरीबी इतनी निम्रता शब्द के अंदर सिद्धि शब्द को जो जो पढ़ोगे शब्द का मन से असर शब्द के अंदर गुरु है गुरु के शब्द ही फर्क नहीं शब्द ही गुरु का रूप तो है उन्होंने भोग पाया सेवका हुक्म होया शब्द पढ़ और जिस वे बाजिया के बैठे अमृत वेला सी तो
तो शब्द शुरू किया कोई आन मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा हम किस पे आग बिचाई दर्शन हर देखन की साई कृपा करे तो सतगुरु मेले हर हर नाम त्याई जे सुख देता तुझे आराधी दुख भी तुझे त्याई जे भुख देता ती राजा दुख विच सुख मनाई तन मन काट काट सब अर्पी विच अग्नि आग जलाई पखा फेरी पानी धुआं जो देवे तो इसलिए पंक्ति पढ़ी समा बड़ा टिके बाबा जी विराजन लगा के दें राजन लगा के जुड़ जाना अकाल पुरख विराजन रख दी कह लगे रागी सिंह जी की पढ़े है अच्छा पखा फेरी पानी धुआं जो देवे सुख बाबा जी कह लगे कदे पखा फेरे आखो स्त्री कदे सात संगत वास्ते पानी धोए एडा वड्डा सवाल एडा वड्डा क्वेश्चन हार के बेनती की बाबा जी असी तो पंक्तियां पढ़वाए बाबा जी कह लगे फिर तुम सानू उपदेश नहीं कर सकते जे अमल नहीं किया भाई जी सानू उपदेश नहीं कर बाजिया तू खा लाहौर तो संगत साढ़े प्यार वाले के ही आए तो मनु बड़ा बड़ी हैरानी हुई संगत में बाबा जी ने ताड़ना कर दी बाहर निकले तो उसद संपूर्ण सिंगोरी होंगे संत जी से बड़े गुरु बड़ा मिठा जीवन बाहर आए हके कह लगे काबरो ना क्योंकि महापुरुषा की ताड़ना बच ही ताड़ना काबरना नहीं चाहिए जे मास्टर टीचर किसी वेले स्टूडेंट बच्चे ताड़ना है उन्हें कोई वैधरूपता नहीं होंगी निराश बच्चे के धड़े वास्ते माता पिता जे किसी वे बच्चे कुछ कह देते हैं तो उन्हें माता पिता का स्वार्थ नहीं होंगे माता पिता की इच्छा होती है कि मेरा बच्चा हमेशा चुकी हथ रहे कामयाब हो रहे जे किसी वे मां पुत को कह देती है पुत मर जा बाबा जी कहते सर पुत्र ओदिया बुरियाइया कहती तो सीधा देती है कि मेरा पुत जुगो जुगो तो महापुरुषा की ताड़ने बाबा नरसिंह सिंह जी महाराज ताड़ना बड़ी प्यार भी करते सर पर ताड़ बाबा जी कहते सर सारे महापुरुष चंगे रहे पर ताड़ने का पदार्थ तो शायद ही कदम पर ताड़ना भी ताड़ना तो दया की करिए पूरे सिर कह लगे थोड़ा जि उपराला करो सोचा भी पक्षे की तो इतने लोड़ नहीं बड़ी ठंड सी ख्याल आया फिर पानी धोई तो पानी का जिस ने ख्याल बनिया तो ना ही सोचा उतों तकरीबन अद्धा नहीं लेखा चश्मा सी जितों पानी उपर यही सोचा चलो मना महापुरुषों की प्रसन्नता ने तो संत महाराज संत सुजान सिंह जी सेव के उस्ताद संत भी साल की संगत उन्होंने बख्शे कीर्तन थोड़े चो कई उन्होंने सुनिया होगा तो जो उन्होंने कीर्तन आ जाता सी तो उठन की हिम्मत ही नहीं सी यही बख्शे बड़े गुणी सन सिर्फ संत ही नहीं सन नाले विद्वान भी सन क्लासिकल के बड़े माहिर बड़े बड़े मुसलमान उन्होंने मनते सन गवी तो उन्होंने पिता जी भाई साहब भाई ज्ञान सिंह जी जोड़ी वाला सिंह ते दास चाहे असी की कीता सिर के उत्ते टीम चुक लै जेड़े सतारा सतारा सेर के क्रस्तर चलो पानी लिया तुर पैर चश्मे से पहुंचे पानी भर लिया चढ़ाई चढ़नी शुरू कर दी चढ़ाई बड़ी जबरदस्ती शरीर पसीना पसीना पानी कपड़िया से डूबता जाए बड़ा सा चले आखिरकार जिस वेले उपर पहुंचे तो अगे बाबा जी नितनेम करके 10 बजे बाहर निकलते थे हथ में सौटी चिट्टे गुरु वर्गे बस्तर पाए हुए चिट्टा दाड़ा मस्ते कोई दूर सी रबी कह दूर वेख्या इशारा किया कोल गए जिस वेले टीम रखे पानी में नमस्कार की बाबा जी मुस्कुरा पाए कह लगे थक गए हो नहीं पाए कह लगे कोई नहीं चाहे एक टी भी पानी का लिया जो पंक्ति पढ़ जोगे तो बन गए ना कुछ बाबा जी बचन कहते सर माड़ी कह मात्र नहीं कमाई करके दुनिया में देख दो
and darshan. Very sad thing. Say, listen, pujo, sab aave, sab gaave, hara kutum bani, adu kedar gaave ya suniya, har sir ka saaye paave, jir sadgur ki aage, sat, sat, sat. Kedar ikke? So, ik kamaai kar. Apna trakte kar jivar bana ke, phir kirtan. Kedar ikke, evi kaya dhe, sam bhi twa, devi te kanjran ki par, kedar ikke? Baba ji ne, ਕਿਉਂਕਿ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਕੋਲ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਉਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਫਰਕ ਪਾਈਦੀ ਹੀ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖਤਾ ਸਾਰ ਤੇ ਮਨ ਜੇ ਗੁਰਮੁਖਤਾ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਕ ਗੁਰਮੁਖਤਾ ਸਿੱਖ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਨਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਸ ਐਵੇਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਉਚਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਅਮਲ ਪੈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਨਾਲੇ ਪੱਖਾ ਫੇਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾਲੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਪੱਖਾ ਫੇਰ

चित्त आनंद पूर्ण परि परमात्म देव कातरे मुतलक माहे जबी शाहे खूबा हसीए मुकद्दस ला इंतहा कुल आलम दी सुल्तान सरवरे कायनात पतत पावन राजन राज पानन पान देवान देव उपमा महान धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दी पावन पुत्र हजूरी विच सुशोभित बैठे हो तो सतगुरां ने बड़ी साडे ते कृपा कीती है कि सानू गुरु ग्रंथ साहिब जी दी बाणी दे नाल रागां दा खजाना जो है बख्शिश कीता है। ते सतगुरु पातशाह जी ने मुख रागां तों इलावा मिश्रत राग सतगुरु ने दिते सानू। ते साहिब गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दी बाणी दे बारे दा सानू हुक्म होया है कि कोशिश करो कि सारी बाणी सारा कीर्तन साहिब गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दी बाणी दा होवे। तो आओ आरंभता विच ही शस्त्रनामा सतगुरु पातशाह जी ने बहुत सुंदर पुस्तक कीती है। सतगुरु पातशाह जी ने विचित्र नाटक विच पातशाह जी ने शास्त्रां नूं भगवती नूं खग नूं नमस्कार कीती है। सतगुरु पातशाह जी उचारण करदे ने विचित्र नाटक नमस्कार मोरंग तीरंग तुहंगंग नम खग अदंगंग अपेयं अपंगंग गदांग ग्रिष्टम नहो समो सहथियं जिने तुलियंग वीर दियो ना दियो। सतगुरु पातशाह जी आओ शास्त्रनामा बड़े प्यार में श्रवण करो। ये राग जो आप जी श्रवण कर रहे हो कोशिश करांगे राग ये जिस तरह के आप जी सारे जानते हो पंथ प्रसिद्ध जथा सत्कार योग अति सत्कार योग भाई साहब भाई दिलबाग सिंह जी गुलबाग सिंह जी जो पंथ के रतन हैं पंथ के हीरे ने तो सत्संग जी वह भी बैठे ने तो अमरीत सिंह जी जख्मी साहब जी कीर्तन करके गए ने। तो आओ ये राग जो आप जी के सन्मुख रखन लगे हैं ये राग जिस तरह के औडव जाति छाडव जाति संपूर्ण जाति तीन जातियां दे राग मन्ने जाते हैं पर चतस्वरी जाति चार सुर का राग है। इसका नाम भवानी राग है मां ते सा इसका वाती है बिलावल थाड़ का यह राग है। तो आओ बड़े प्यार गा पा नी ये वर्जित करके ये

तिन प्रभु जाबी आइस मोदिया। तो दशमेश पिता जी फरमाते ने कि जदों मैनू हुक्म होया उस अकाल पुरख का

मेहमान न जाने भेद, ब्रह्मा न जाने भेद, अवतार न जाने अंत, परमेश्वर

आयो गापुर किहिं मुरार कंस किर थारथ कियो उग्र सन को राज अभय भगत जन जी।